0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
3: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
3: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
3: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
3: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
2: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
3: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
2: जी।
3: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
2: पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
2: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
3: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
2: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
3: तो चलिए श्रोताओं, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
2: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
3: श्रोताओं, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
2: जी।

0: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
1: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
0: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ, लेकिन श्रोताओं, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
1: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था। लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
0: और इसी क्रम में श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
1: क्या हुआ था अजीत जी?
0: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी, जबकि वे जीवित थे।
1: जी।
0: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
1: जी, क्या छपा था?
0: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
1: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी।
0: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
1: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
0: आशुतोष, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
1: जी
0: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
1: वो कौन सी अजीत जी?
0: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
1: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
0: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
1: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
1: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए और हमारा सवाल है,
1: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
0: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है।
1: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
0: जी
1: तो श्रोताओ, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारा आज का पहला

0: कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए,
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
4: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
5: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
4: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
5: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
4: क्या कहा?
5: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
4: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
2: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
5: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
6: नहीं, अरे ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
7: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
5: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
7: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
2: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ

0: चिल्लाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
1: तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
3: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
4: नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
5: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
6: त्रेता युग में आरुणी उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
7: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थीं। एक दिन,
8: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
9: जो आज्ञा आचार्य।
8: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रख।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़।
6: ओह, पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
5: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।
0: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
6: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
0: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
5: श्वेत केतु,
6: अष्टावक्र,
5: मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
6: हाँ,
5: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
6: कब चलना है?
5: बस अभी तुरंत।
0: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
8: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
5: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
1: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
6: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?

0: मेरा नाम श्वेत केतु है, हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
1: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूं।
2: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
1: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
3: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
2: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है, जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता, और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
1: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता, और नदी वेग से बहती है।
2: अत्यंत सुंदर।
4: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
2: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
1: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
5: मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो।
3: दरबार में बैठे सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे।
1: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
4: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा।
2: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
1: आप सब अपने आप को महान समझते हैं, और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
2: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
1: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
2: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी।

कुछ को डरो भय तो करो बढ़ती है कतार। एक या तो दो है भले तीन नहीं चार यार नानकूड़ राजा तारे।